यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

0: कृतिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: समानता का महत्व. आज का जमाना शिक्षा और विकास का है, फिर भी समाज में कहीं मेरा तेरा, ऊंच नीच, गोरा काला, अमीर गरीब इत्यादि के आधार पर भेद किया जा रहा है, जिससे पैदा हुई विकृतियां समाज को बांट देती है. लेकिन इसके विपरीत समाज में समानता के आधार पर अगर व्यवहार हो तो वहाँ सुखमय संसार की स्थापना सहज संभव है. मानव से मानव को जोड़ने वाला चमत्कारी गुण है समानता. समानता अर्थात संबंध संपर्क में आते समय सभी के साथ बिना भेदभाव के एक समान व्यवहार करना, मन वाणी कर्म में सभी के लिए समान रूप से कल्याण और स्नेह की भावना रखना, सभी मानव मात्र को एक ईश्वर की संतान मानकर उनके साथ आदर सम्मान जनक व्यवहार करना, ऊंच नीच, अमीर गरीब, काला गोरा इत्यादि भेद से परे हो सभी के साथ आत्मिक प्रेम युक्त आचरण करना भी समानता यानी समता है. समानता प्रभु से प्राप्त सर्वोत्तम गुण विशेष है जो हमें ईश्वर के समीप लाता है और अहंकार से मुक्त कर एक मानव को दूजे से जोड़ने में बड़ी मदद करता है. समता के गुण से आज का बटा हुआ विश्व परिवार एकता के मंगल सूत्र में पिरोया जा सकता है, अर्थात इस महान गुण से ही एकता का जन्म होता है. जहाँ एकता है वहाँ स्वर्ग सा आलम होता है. समता, भाईचारे, वैश्विक एकता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देती है, अपने परायों की दूरी घटाती है और दिलों को दिलों से जोड़ती है. संसार में समानता के आधार से संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा हो तो विषमताओं और लड़ाई झगड़े सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं और विश्व में शांति और सुखी समाज की स्थापना हो सकती है. सभी धर्मों की नींव भेद विरहित समता पर आधारित है और सभी धर्म स्थापकों ने सदा समता का ही संदेश जो दिया है. मदर टेरेसा के हृदय में सभी मानव मात्र के लिए समानता थी, इसलिए बिना भेदभाव के वे समानता के आधार पर जन सेवा करती थी और इसी के कारण लोग उन्हें प्यार से वर्ल्ड मदर कहा करते थे. अतः समानता के महान गुण को अपनाइए और विश्व परिवार का प्यार से जतन कीजिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
1: भक्तिमय सकाळमध्ये वेळ निरोपायची झाली आहे। केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यूनिंग आहात। आणि जाण्यापूर्वी आजच्या पुण्यतिथी, मायकेल जॅक्सन अमेरिकन गायक यांची आज पुण्यतिथी, जीवा भारतीय दिग्दर्शक सिनेमॅटोग्राफर आणि पटकथा लेखक यांची पुण्यतिथी आजच, वि ग भिडे शास्त्रज्ञ व तत्वज्ञानाचे अभ्यासक पद्मश्री यांची पुण्यतिथी आजच्याच दिवशी, अण्णासाहेब मगर पिंपरी चिंचवडचे पहिले नगराध्यक्ष यांची पुण्यतिथी आजच आहे, सत्येंद्रनाथ दत्त बंगाली कवी यांची पुण्यतिथी आजच्याच दिवशी। या होत्या आजच्या पुण्यतिथीने। यासोबत मनीष निरोप घेते, उद्या पुणे येईनच, पण तोपर्यंत तुम्ही ऐकत रवणू धोनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार
2: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇದು ಕೆಎಲ್ಇ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:15 ಗೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 8:15 8:30 ವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:30 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಧುರ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9:30 ಗಂಟೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 9:30 ದಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 10:00 ದಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 12:00 ದಿಂದ 12:30 ಗಂಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 12:30 ದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಚಿತ್ರಮಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 1:00 ದಿಂದ 1:30 ಗಂಟೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 1:30 ದಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಮರಾಠಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2:00 ದಿಂದ 2:15 ಗೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 2:15 ದಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 4:00 ದಿಂದ 4:30 ಗಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾವಸಂಗಮ, 4:30 ದಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಯುವಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 5:00 ದಿಂದ 7:35 ಗಂಟೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 7:35 ದಿಂದ 7:45 ಗಂಟೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 7:45 ದಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು, 8:00 ದಿಂದ 8:15 ಗಂಟೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:15 ದಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಯಾದೊಂಕಿ ಬಾರಾತ್ ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
3: ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮ್ಮ
1: ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM KLE ಕನಸು ಪೆ ಆಪ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ಸುನೆಂಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ನ್ಯೂಸ್.
4: चुनाव की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई. प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया. श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की. उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया. सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास.
5: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है. ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे. ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया. इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
6: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी. आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया. अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
7: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
8: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
7: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
9: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
5: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
10: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
5: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
11: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
5: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
12: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई, भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
5: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister
14: FM वेणुधुनी के एल ई कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एल ई कंसू।
15: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
16: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
15: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
16: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
15: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831-24-86-286.
17: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನೀಡುವೆವು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಜ್. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಬ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ ಲಭ್ಯ, ಬಿಪಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಕೆಎಲ್ಇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8660335218. ವೆಬ್ಸೈಟ್ kcpt.kaher.edu.in. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭರವಸೆ.
18: One Life, Ambika Infra Build and Core Developers, the new landmark of Belagavi. Are you ready to witness a new landmark in luxury? Introducing the city's largest and most ambitious gated community, Ambika One Life, One Care. This isn't just another residential project. It represents a monumental shift in how our city lives. We are offering a sprawling paradise meticulously designed for those who refuse to settle for anything but the absolute best in modern living. This grand vision is brought to life through a prestigious joint venture between Core Developers and Ambika Group. By combining decades of industry expertise and a shared passion for excellence, this partnership ensures that every square foot of your home is built with uncompromising quality. Our commitment to total transparency and the highest standards of modern engineering provides you with a home that is as sturdy as it is beautiful. Located at the elite 9th Cross, Bhagyanagar, this massive development features 200 luxury flats, creating a vibrant city within a city. Residents will enjoy ultimate peace of mind within a secure, gated environment surrounded by world-class amenities and a community of like-minded families. At this scale, the luxury is larger, the gardens are greener, and the lifestyle is truly unmatched in the region. The future of Belagavi is here and your place in it is waiting. Don't miss the opportunity to own a home in the city's most talked about address where care meets comfort. Call us today at 776047729 or visit our site office at Ambika Platinum to book your dream flat. Ambika, one life, one care. It is the biggest lifestyle statement in town.
19: केली फार्मसी कॉलेज बेळगाव शैक्षणिक वर्ष 2026 आणि 27 साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एअरपोर्ट रोड बसवणकुडची बेळगाव येथे अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज नव्या कॅम्पस मध्ये महाविद्यालय स्थलांतरित झाले आहे. उपलब्ध अभ्यासक्रम असा आहे बी फार्म, फार्म डी, एम फार्म, पीएचडी. फार्मसी क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सुवर्ण संधी. महाविद्यालयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये 100 अधिक वर्षाची शैक्षणिक परंपरा आणि अनुभव. जगभरातील 3000 अधिक माजी विद्यार्थ्यांचे भक्कम नेटवर्क. बेळगाव विमानतळ रस्त्यावरील सुसज्ज आणि अत्याधुनिक नवा कॅम्पस. परिणामाधारित शिक्षण पद्धती, प्रगत डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम, जागतिक दर्जाचे ग्रंथालय आणि माहिती केंद्र, आधुनिक प्रयोगशाळा व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण सुविधा, आधुनिक वसतिगृहे आणि क्रीडा सुविधा सुद्धा. नॅक ए प्लस ग्रेड आणि NIRF क्रमवारी प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उत्तम रोजगार संधींना प्राधान्य. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 08312471399 आणि 9740639702. वेबसाइट आहे www.

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं के एल ई वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, मानसून जोरों शोरों से शुरू हो चुका है हमारे शहर में और बहुत सारी बारिश हो रही है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, पर उसी के साथ ठंड भी बहुत बढ़ रही है। और ठंड बढ़ती है तो हम गर्म कपड़े निकालते हैं और गर्म कपड़े पहनना शुरू करते हैं। आज हम इन्हीं गर्म कपड़ों की बात करेंगे, पर उससे पहले आज का शो शुरू कर देते हैं और सुनाती हूँ शुरुआत के कुछ प्यारे गाने। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत,

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू के एल ई वेणुध्वनि 90.4 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा, और वी रिलैक्स में आज हम वुलन्स की बात करने वाले हैं। वुलन्स यानी ऊन के कपड़े, यानी गर्म कपड़े, जिनको हम बारिश के मौसम में और सर्दियों में खूब पहनते हैं और गर्मियों में फिर उनको वापस अंदर रख देते हैं। वुलन्स एक तो बहुत महंगे होते हैं, हमारे रोजाना के कपड़े काफी सस्ते होते हैं, पर वुलन्स बहुत महंगे होते हैं और हम उनको ज्यादा नहीं बाय कर सकते। यानी ऑन एन एवरेज जनरली किसी इंसान के पास एक या दो, तीन या ज्यादा से ज्यादा चार स्वेटर होंगे, स्वेटर, जैकेट, शॉल सब कुछ मिलाकर। उससे ज्यादा हमारे पास नहीं होते, क्योंकि इनको हम पूरा साल नहीं इस्तेमाल करते। जब हमको ठंड महसूस होती है तभी उसका इस्तेमाल होता है और फिर हम उसे रख देते हैं, तो ये ज्यादा नहीं होते। दूसरा, ये काफी महंगे होते हैं हमारे रेगुलर कपड़ों से भी ज्यादा, और उनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ मैं, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास जो वुलन्स है ना, उनको आप कैसे मेंटेन करें, उनका ख्याल कैसे रखें ताकि वो लंबे समय तक अच्छे से चल पाए। तो इस विषय में अगर इंटरेस्ट हो तो शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और साथ में प्यारे प्यारे गाने भी सुनिए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

ऊन से बने हुए कपड़े जैसे स्वेटर्स, मोजे, टोपियाँ, हाथ के मोजे, ये सारी चीजें हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी जब आप कहीं कश्मीर या कुल्लू मनाली या ठंडी हिल स्टेशंस पे वगैरह कहीं घूमने जाओगे ना, तो आपको वुलन से बनी हुई सुंदर सुंदर शॉल्स तो मिलती ही है, पर उसके अलावा जैकेट्स मिलते हैं, वुलन की टोपी यानी कुल्लू टोपी जो होती है ना, वो टोपी मिलती है। उसके अलावा आपको वुलन के सूट भी मिलते हैं, यानी सलवार सूट भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम शौक से लेते हैं तो है, पर उनको इस्तेमाल कैसे करें, उनको मेंटेन कैसे करें, उनका ख्याल कैसे रखें, ये हमको नहीं पता होता। और ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें होती है जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती है, उनको हम स्पॉइल भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है आपकी, तो आज के शो में आपको बहुत सारी नुस्खे मिलने वाले हैं कि आप अपने विलन के कपड़ों को कैसे मेंटेन करें। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, पर उससे पहले कुछ प्यारे गाने सुन लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

0: दोस्तों, अलग अलग जो फैब्रिक्स होते हैं, अलग अलग कपड़े जो होते हैं, उनका ख्याल रखने का तरीका भी अलग होता है। जैसे कॉटन है तो कॉटन काफी रफ एंड टफ है, आप उसको घर में रोजाना धो सकते हैं, आराम से पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। सिल्क के कपड़े हो तो वो काफी नाजुक होते हैं, उनको ज्यादा धोया नहीं जाता, उनके ऊपर स्टार्च का इस्तेमाल करोगे तो वो सिल्क को खराब करते हैं, उनको तह करके रखने का तरीका अलग होता है। वैसे ही वुलन्स का ख्याल रखने का तरीका भी अलग है। अब कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं वो हर मटेरियल को अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा अगर आप किसी भी फैब्रिक को या किसी भी मटेरियल को धोओगे, ज्यादा धोया करोगे, फ्रीक्वेंटली धोओगे, तो वो मटेरियल खराब हो जाता है। वही रूल वुलन्स को भी अप्लाई होता है कि वुलन्स को आप जितना ज्यादा और जितना फ्रीक्वेंटली धोओगे, उतने जल्दी आपके स्वेटर्स और वुलन क्लोथ्स खराब होंगे। तो ये बेसिक रूल तो वुलन को अप्लाई होता है। उसके अलावा भी एक रूल है कि बहुत बार ना जो कपड़े हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, अलमारी में पड़े रहते हैं, उनको 3-4 महीने में, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार बाहर निकालकर धूप दिखानी बहुत जरूरी होती है, ताकि वो फिर से रिफ्रेश हो जाए और जो भी सीलन लगी हो उनमें या जो कोई स्मेल आ रही हो, ओडर हो, वो सब निकल जाए। तो ये भी वुलन्स को अप्लाई होता है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वुलन्स, तो कभी कभार उनको बाहर निकाल के जरा धूप में थोड़ी देर, 1-2 घंटा सुखा देंगे, तो वो वुलन्स काफी अच्छे और हेल्दी रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शो में। कुछ प्यारे प्यारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको सुनकर तुरंत लौट कर आइए, क्योंकि मैं भी आपका इंतजार कर रही हूं। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।
1: Get up, get up. Get on the dance floor. Get up, get up. Get on the dance floor. Get up, get up.

अब वुलन्स को वॉश करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो वुलन्स को वॉश करने से पहले उनके ऊपर कश्मीर ब्रश घुमाएं। कश्मीर ब्रश एक अलग किस्म का ब्रश होता है जो लकड़ी का बना हुआ होता है और उसके ब्रेसेस बहुत सॉफ्ट होते हैं। उस ब्रश को जब आप अपने वुलन गारमेंट्स पे चलाते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो लिंट होता है यानी जो धागे निकलते हैं ना ऊपर ऊपर, मराठी में कहते हैं उसे गुंज निकतत, तो वो जो धागे होते हैं, वो जो लिंट होता है वो निकल जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम ये ब्रश घुमाते हैं वुलन्स पे, तब वुलन्स रिफ्रेश होते हैं और अपना जो नेचुरल ऑयल होता है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको बाहर छोड़ते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो शाइन होती है वो इम्प्रूव होती है। तो वॉश करने से पहले ब्रश घुमा लीजिए, और उसके बाद अगर आपको जरूरत लगे कि फिर भी ये बहुत मैला और डल लग रहा है तो उन्हें वॉश कीजिए। अगर वो मैला और डल नहीं लग रहा है तो उसे वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुलन्स को रोजाना वॉश नहीं किया जाता। अगली टिप मैं आपको दूंगी, पर उससे पहले अगले कुछ गाने सुन लेते हैं। सुनते रहिए KLEV Venu Dhvani 90.4 FM।

वुलन्स को वॉश करने के लिए डेलिकेट या माइल्ड डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है। बहुत सारे वुलन्स को वॉश करने के अलग से डिटर्जेंट या सोप लिक्विड्स मिलते हैं मार्केट में, आप उनको परचेज कर सकते हैं, उनको लेकर आ सकते हैं, या फिर जो आपके पास माइल्ड डिटर्जेंट है घर पे उसका इस्तेमाल करके आप वुलन्स को वॉश कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साबुन या डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको उसे रिफ्रेश करना है, तो सिर्फ पानी में भिगो के आप वुलन्स को वॉश कर ले। अगर वुलन्स मैले दिख रहे हैं तो साबुन का इस्तेमाल करो, मैले नहीं दिख रहे हैं और आपको बस रिफ्रेश करना है तो पानी में भिगो के उनको धो दोगे तो भी वो रिफ्रेश हो जाएंगे।

आप सुन रहे हैं KLEV ध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स में मैं आरजे स्वरा आज आपको वुलंस का कैसे ख्याल रखना है उसके बारे में कुछ बातें बता रही हूँ। अब वुलंस को वॉश करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, पर उन्हें कैसे वॉश कर सकते हैं। वुलंस को आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं और मशीन वॉश भी कर सकते हैं। हैंड वॉश करते समय ये ध्यान रखना है कि वुलंस के ऊपर जो हम साबुन ब्रश करके रगड़ते हैं ना कपड़ों को, वैसे वुलंस को रगड़ना नहीं है। साबुन के बारे में बताया कि माइल्ड डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है या फिर वुलंस के लिए जो स्पेसिफिक लिक्विड वॉश आता है वो इस्तेमाल करना है, और जो हम कपड़ों का ब्रश कपड़ों को रगड़ते हैं ना ब्रश से, वो ब्रश नहीं रगड़ना है। हल्के हाथों से मल के आप अपने वुलंस को धो सकते हैं। अगर मशीन में धोना चाहते हैं तो मशीन में अलग अलग प्रकार के मोड्स ऑलरेडी डिजाइन करके अवेलेबल होते हैं। उसमें आप वुलन का जो मोड होता है उस मोड पर बटन दबा दीजिए और वुलंस को धो सकते हैं उसमें, क्योंकि वो इस तरह से सेटिंग किया होता है कि वो बिल्कुल माइल्ड तरीके से पर अच्छी तरीके से वुलंस को वॉश करेगा। अगर आपके मशीन में वुलन का स्पेसिफिक मोड नहीं है तो आप डेलिकेट मोड में वुलंस को वॉश कर सकते हैं, पर नॉर्मल कपड़ों के साथ वुलंस को नॉर्मल सेटिंग में बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, नहीं तो वो सारे आपके जो स्वेटर्स है वो सारे खराब हो जाएंगे। बहुत बार हमारे वुलंस पे दाग लग जाते हैं और वो दाग निकलते नहीं है, तो अगर सफेद स्वेटर हो तो हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, पर किसी भी प्रकार के वुलन के ऊपर ब्लीच का इस्तेमाल मत कीजिए। ब्लीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है और वो वुलन के सभी रेशों को ढीला कर देता है, उसका जो शाइन है वो सारा चला जाता है और वुलन्स आपके स्वेटर्स बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल मत करो, ब्लीच का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। अगर आपका सफेद स्वेटर है और उसके ऊपर दाग लग गया है, वो खराब हो गया है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि उस स्वेटर को आप घर पे वॉश करें ही नहीं, आप उसे ड्राई क्लीन में दे दीजिए और उनको बताइए कि ये वुलन है उसको आराम से वॉश करना, ज्यादा हार्श केमिकल्स यूज मत करना और ये दाग इसके ऊपर लगा है तो उसको मिटा के देना। तो ड्राई क्लीन वाले क्या करेंगे, या तो वो उसे पेट्रोल वॉश करेंगे या फिर वो ऐसा मेथड अपनाएंगे जिससे आपके स्वेटर को कम से कम डैमेज हो। यानी जब हमको सर्दी जुकाम होता है या फिर हमको बुखार आता है या कोई भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्पेसिफिक, वैसे ही वुलंस के ऊपर दाग लग जाए तो उन्हें उनके डॉक्टर के पास भेजिए ताकि उनके डॉक्टर उसके ऊपर सही उपाय कर सके। अभी आपकी बोरियत का उपाय मैं करती हूँ और आपको कुछ प्यारे गाने सुनाती हूँ। आप सुनते रहिए KLEV ध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

अलावा लेबल लगा हुआ होता है, कंपनी का नाम होता है और उसके नीचे सभी डिटेल्स दी हुई होती है, छोटी छोटे अक्षरों में मेंशन की हुई होती है कि ये वुलन है, कितना परसेंट है, क्या है वगैरह वगैरह। उसके पीछे ना वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए होते हैं। सिर्फ वुलन्स पे नहीं, हर किसी किस्म के कपड़े पर लेबल के पीछे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, तो उन कपड़ों को वॉश करने से पहले आप वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें और उस हिसाब से अपने वुलन्स को वॉश कीजिए। कई बार वुलन्स का कलर, उनकी निटिंग, उनकी क्वालिटी, इन सब में बहुत फर्क होता है, इसीलिए उनको वॉश करने का तरीका भी अलग होता है। तो जब वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका काम पूरा वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके स्वेटर को, आपकी शॉल को किस तरीके से वॉश करना है। तो वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ना बेहद जरूरी है। एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद हम वुलन्स की बातें और जारी रखेंगे। आप सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

जब हम फुलन्स को वॉश करें, मशीन वॉश करें, तो मशीन तो अपने हिसाब से स्पिन करेगा उसके मोड में जो सेट किया हुआ है, और वो सही होता है। पर जब हम वुलन्स को हैंड वॉश करते हैं, घर पे हाथ से धोते हैं, तब हमको जो हम नॉर्मल कपड़े निचोड़ते हैं ना, उस तरीके से वुलन्स को ट्विस्ट करके निचोड़ना नहीं है। उसकी वजह से उनके रेशे ढीले पड़ जाते हैं और वुलन्स बहुत ही खराब दिखने लगते हैं। तो उनको निचोड़ने का सही तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पास घर में टॉवल होगा,

जो मोटा टॉवल होता है टर्किश टॉवल, उस टाइप का टॉवल हो या फिर कोई भी ऐसा उसी शेप का बड़ा थोड़ा मोटा फैब्रिक, मोटा कपड़ा, उसके ऊपर वुलन्स को वॉश करने के बाद बिछा दीजिए। और उसके बाद में हम जैसे योगा मैट रोल करते हैं ना, उस तरीके से टॉवल के साथ वुलन के स्वेटर को रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद उसे हल्का सा दबा दीजिए ताकि वुलन के अंदर का सारा पानी निकल जाए और वो सारा पानी वो टॉवल सोख ले। इस प्रकार से वुलन के कपड़ों को आपको निचोड़ना है। आपको हम नॉर्मली जो नॉर्मल कपड़े ट्विस्ट करके निचोड़ते हैं वैसे नहीं निचोड़ना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है और इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके वुलन्स बहुत लंबे समय तक अच्छे तरीके से चलेंगे। सुनते रहिए KLEV विनोदवनी 90.4 FM। कुछ गानों के बाद मैं आपसे फिर से यहीं पर मिलूंगी।

जब भी सीजन बारिश का या ठंड का मौसम खत्म हो जाए और हमें हमारे वुलन्स को अभी कबर्ड में रखना हो तो ऐसे ही नहीं रख देना है। हमेशा जब उनको हम स्टोर करते हैं तो उनको वॉश करने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद ही उनको स्टोर करें, क्योंकि उसी मैल के साथ उन्हीं अपने उसको कितने दिनों तक इस्तेमाल किया है और कितना मैल, धूल, मिट्टी उसके ऊपर जमी हुई होती है जो हमारी आंखों को दिखती भी नहीं है। बहुत बार स्वेट लगा हुआ होता है, कुछ पानी या कुछ खाने पीने की

चीजें उसके ऊपर गिरी हुई होती है। इन सब के साथ अगर आप वैसे ही फोल्ड करके वुलन को अंदर रख दोगे तो पड़ा पड़ा वो खराब हो जाएगा, उसके ऊपर फंगस लग सकता है और वो हेल्दी नहीं है। तो जब भी सीजन खत्म होने के बाद आप अपने वुलन्स को अपने कबर्ड में स्टोर करें तो उससे पहले वॉश करके अच्छे से सुखा के फिर उनको स्टोर करना। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि वुलन के कपड़े श्रिंक भी हो जाते हैं। जनरली हमारी कंप्लेन होती है कि बहुत ढीले पड़ने लगते हैं, धागे उसके ढीले होते हैं यूज करने के बाद। तो उसका उपाय मैंने आपको बता दिया कि उनको स्पिन नहीं करना है, उनको निचोड़ना नहीं है। पर अगर आपके वुलन श्रिंक हो रहे हैं तो उसको अनश्रिंक करने का भी एक तरीका है। उसे ऐसे ही खींच के अनश्रिंक मत करना, गुनगुने पानी में फैब्रिक कंडीशनर डालिए या फिर फैब्रिक सॉफ्टनर जो आता है मार्केट में वो डालिए और उसमें थोड़ी देर भिगो के रखिए और फिर जैसे मैंने आपको बताया टॉवल के अंदर वुलन्स को लपेट कर निचोड़ कर फिर सुखाइए और सुखाते समय उसको थोड़ा सा हाथ से स्ट्रेच कर लीजिए ताकि वो जो श्रिंक हो गया है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाए। उसको आप कुछ फैब्रिक कंडीशनर या फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल किए बिना अगर आप उसे खींच कर नॉर्मल करने की कोशिश करोगे तो उसके धागे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपके कपड़े श्रिंक हो रहे हैं या फिर आपके वुलन श्रिंक हो रहे हैं तो उनको गुनगुने पानी में फैब्रिक सॉफ्टनर या फैब्रिक कंडीशनर डाल के थोड़ी देर भिगो के रखिए और फिर उन्हें सुखाइए और सुखाते वक्त उनको स्ट्रेच कर लीजिए। अगर समझो आपके पास फैब्रिक कंडीशनर नहीं है, फैब्रिक सॉफ्टनर भी नहीं है, फिर भी आपको अपने वुलन्स को अनस्ट्रेच करना है तो तब आप आपके घर पे अगर हेयर कंडीशनर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वुलन्स को सॉफ्ट शाइनी बना सकते हैं। अगर आपके वुलन में बदबू आ रही है, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं या फिर वॉश नहीं किए हैं सही तरीके से, तो अगर बदबू आ रही है तो फिर आप उसे धूप में सुखा दीजिए। एक आध घंटा दो घंटे में वो बदबू सारी उड़ जाएगी और आपका स्वेटर जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो ये था आज का शो। बहुत सारी टिप्स मैंने आपको दी है कि आप अपने गर्म कपड़ों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। गर्म कपड़े आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपकी ठंड से सुरक्षा करते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। आज का शो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ मैं जस्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और स्वेटर से गर्माहट तो आपको मिलेगी ही, पर रिश्तों की गर्माहट भी बनाए रखिए, क्योंकि स्वेटर हो या रिश्ते, थोड़ा सा ख्याल दोनों का ही रखना पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूर। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा, जो लेके आई है यादों की बारात। यादों की बारात में दोस्तों, हम हमेशा ही आपको कुछ ऐसे गाने सुनाते हैं जिन्हें आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। आज का सफर ये हमारी जिंदगी के सफर पे आधारित है। जिंदगी का सफर मतलब एक इंसान जब गर्भ में होता है, फिर वो पैदा होता है, खुशियाँ लाता है, बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर अपना घर संसार बसाता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। यानी लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसी होती है और इस दौरान हमारे अंदर किन प्रकार की फीलिंग्स होती है, उससे रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे गाने मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का शो। पहला गाना है एक नई मेहमान की। जिंदगी फिल्म का ये गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, राजकुमार, पृथ्वीराज कपूर, महमूद, जयंत, जीवन, लीला चिटनिस और हेलन ने काम किया था। इस गाने को म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र ने। एक गोद भराई का गाना है, एक माँ के लिए अपने बच्चे के आने का एहसास, इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और अपनी ऐसी कुछ यादों को याद कीजिए।

नन्हा सा मेहमान जब हमारे घर में आता है तो हमारा घर खुशियों से भर जाता है। पूरे घर में खिलौने, कहानियों की किताबें, चॉकलेट्स, टॉफियां बिखरी हुई दिखती है। अब घर के बड़ों को प्यारी प्यारी बाल कविताएं याद हो जाती है और दादी नानी हमेशा कहानियां सुनाती है। बच्चे अगर घर में हो तो घर पूरा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही बच्चों के प्यारे से बचपन का ये खूबसूरत सा गाना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये चिराग कहाँ और रोशनी कहाँ इस फिल्म का गाना है जो 1959 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है रवि ने और इस फिल्म में मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने काम किया था। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और अपने बचपन की यादों को ताजा कीजिए। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

0: पंख लगा कर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई, देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई,
1: चमक

0: निकले जादूगर में। पलक के जादूगर मुंह ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

0: राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया, राजा आया, बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि और यादों की बारात के खूबसूरत से सफर में हम हमारी जिंदगी का सफर कैसे आगे बढ़ रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। बचपन हुआ और अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है कि हम भी अगर बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। हम ये करते वो करते, कहानियाँ सुनते, ये खाते ये खेलते, और ये जो ख्वाहिशें हैं ये हमेशा ही हमारे मन में आती रहती है। सुनते हैं हम भी अगर बच्चे होते तो क्या क्या करते। दूर की आवाज इस फिल्म का अगला गाना, जिसके बोल है हम भी अगर बच्चे होते, जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले और मन्ना डे ने। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी और सायरा बानू ने काम किया था। इनके साथ साथ जॉनी वॉकर, प्राण और दुर्गा खोटे ने भी इस फिल्म में काम किया था। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

बचपन के बाद आती है जवानी, और ये जवानी जब आती है तब हमें अकेलेपन का एहसास दिलाती है। हमारा मन एक साथी की खोज में परेशान होने लगता है। हर एक इंसान को एक साथी की, एक हमराही की, एक हमराज की जरूरत होती है। अगला गाना है जोशे जवानी, जोशे जवानी हाय रे हाय। अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का ये गाना है जो 1967 में रिलीज हुई थी। इस गाने को राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया है। म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र जी ने, गाया है मुकेश जी ने। सुनते हैं ये जोश जवानी क्या कहती है।

जिंदगी के सफर में हम जब जवान होते हैं, हमें एक साथी की तलाश होती है और उस साथी को ढूंढते ढूंढते हम भी अपने आप को तैयार करने लगते हैं। फिर शुरू होती है अपने आप को प्रूव करने की शरियत। लड़का और लड़की दोनों के ही अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश होती है और यही कोशिश अगले गाने में हमको सुनने को मिलती है। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, कारवां फिल्म का ये गाना है जो 1971 में रिलीज हुई थी। ये गाना जितेंद्र और अरुणा ईरानी के ऊपर फिल्माया गया है, जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब ने और लता मंगेशकर ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाइए।

दोस्तों, ये जो जवानी होती है ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। इस जवानी में जो जो हम देखते हैं या जो जीते हैं वो हमारी जिंदगी का असली हासिल माना जाता है। जवानी में प्यार होता है, शादी होती है, अपना साथी मिलता है, अपनी फैमिली बढ़ती है। जवानी में जोश होता है, जिम्मेदारियां होती है, अपने सपनों को पूरा करने की चाहत होती है, दूसरों के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की ख्वाहिश भी होती है। जवानी में जो हमारे अंदर जोश होता है, जो काम करने की लगन होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। पर हमें हमारी जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए ये सिखाने वाला अगला गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, इस गाने को गाया है मुकेश साहब ने। इसे फिल्माया गया है राज कपूर जी के ऊपर फिल्म अनारी का ये खूबसूरत सा गाना 1960 में हमने पहली बार सुना था। इसे म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र जी ने। सुनिए और सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहे हैं?

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।